0: सच बता
1: और वो बंदे ने फॉर्म भर दिया तो क्या बोला भर देगा ना वो
2: बस रास्ते में यार यार उसके लिए जो कह रहे थे ना वो लोग कहेंगे तो उसका तो उसकी हो जाएगी लेकिन वो जो ऊपर वाला फंड है ना वो तो वो ये कहेंगे तो भाई भैया दर्द हो यार हाँ वही तो वो यार चक्कर हुई है इसलिए
3: Thank you.